0: or call 06 357 9340.
1: Buddhism On Air, hosted by Tenzin Chosang, discusses Buddhism and Buddhist beliefs. The show can be heard right here on Manawatū People's Radio every Thursday at 11:30 a.m.
2: सुनिए मुंबई के मल्हार
3: और दिल्ली के शिल्पी की
2: पामी की
3: पागलपंती
2: नॉट अ शो पर
3: हर सोमवार और शुक्रवार
2: शाम 5 बजे ऑन मानवाटो पीपल्स रेडियो
3: या सुनिए ऑनलाइन
2: npr.nz/show/indian पर
0: द लेटेस्ट रिजल्ट्स
4: शी वाजंट इवन वन ऑफ माय डार्क हॉर्सेस टू रीच द सेमी फाइनल्स
0: एक्सपर्ट एनालिसिस
5: ही इज गोना बी डायलिंग अप सम वेरी इन्वेंटिव प्लेस
0: एंड रिएक्शन फ्रॉम द स्टार्स ऑफ स्पोर्ट
6: आई कैन डेफिनेटली गो टू अ न्यू लेवल आई हैव टू इफ आई वांट टू स्टे इन द टूर्नामेंट
0: अ वर्ल्ड ऑफ स्पोर्ट इन स्पोर्ट टुडे फ्रॉम द बीबीसी
7: द मैच ऑफ द टूर्नामेंट हैज एंडेड एन एब्सोल्यूट थ्रिलर
0: द बीबीसी वर्ल्ड सर्विस Midnight till 8 a.m. every day on NPR.

तो चलिए समय है अब मुझे इजाजत लेने का, मिलते हैं अगले हफ्ते एक बार फिर से। उम्मीद करता हूं कि आपको सभी गाने बहुत पसंद आए होंगे, और जाते जाते एक श्रेया घोषाल की आवाज में ये गाना आपके लिए फिर से, जिसका नाम है तेरी मेरी कहानी।